फौजी लोके लोके आण सिंह सूर में तकाण जेड़ा चुके उची तौण सी निशाने फुंड दे धूले दा सुमेश दे जानावार दारू बार रखिए पवित्र

देख तेग देख तेग पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे बोले।

0: प्रभ के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभ के सिमरन सहज समानी,
0: प्रभ के सिमरन ने चले आसन,
1: प्रभ के सिमरन कमल बगासन,
0: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार,
0: सिमरे से जन जन को प्रमया,
1: नानक तिन जन सन्नी पया,
0: हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग वेद उपाए,
0: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच औ कुंठ जाते,
0: हर सिमरन तारी सब तरना
1: सिमर सिमर हर कार।

0: संगम रत गुण गायन,
1: साध के संग सर्वतान गम,
0: नानक साध के संग सबल जनम,
1: साध के संग नहीं कचकाल,
0: दासन पेट तो ओत निहाल,
1: साध के संग कुलु कथा रहे,
0: साध के संग नरक पर रहे।

0: ज्ञानी के में तरसतर समान है।
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाय अपमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
1: मन अपने है सबते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए,
1: नानक जिन प्रभु आप करे।

0: का दर्श बड़ भागी पाई है।
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
1: ब्रह्म ज्ञानी के

0: रस भोगी।
1: कई कोट पंखी सरप पाए,
0: कई कोट पाथर विरख निब जाए।
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर,
0: कई कोट देश भू मंडल,
1: कई कोट ससियर सूर नखियत।

0: जब अभगित गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपने आप पिय चर जा
1: नानक।

0: होए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा।
1: डिग्री सृष्ट तकाए चंबव आजुगा स्वरूप संभव।
0: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो।
1: दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता।
0: जे अस्तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे।

0: माता पिता कुटुंब सहित सियो पवित्र संगत सबाइया
1: दे पवित्र सुन दे पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया
0: कह नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: करमी सहज नाउ उपजै बिन सहजे सहसा न जाए
0: नह जाए सहसा कितै संजम रहे।

0: लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
1: ए माया जित हर विसरे मोह जय पाओ दूजा लाया।
0: कह नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी।

0: तिस मिल रहे हर वसै मन आए।
1: हर आप मलका पागत नाके नानका जिन हर पल पाए।
0: हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रास जानी।
1: हर नित जप हो जी हो लाह कट्यो दिहाड़ी।
0: एहो तान तिना मिलया जिन हर आपे पहाना।
1: कहे नानका रास मेरी मन हो आवन जारा।
0: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास ना जाए।
1: प्यास ना जाए होर किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए।
0: हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुत।

सो भंडारे भरपूर करने, काल कंटक दूर करने, दीर्घ आयु देह अरोगता चढ़दी कला बख्शिश करनी, शुभ मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां, दर आई समूह संगत दियां हाजरियां पिटावां दर प्रवान करनियां, पातशाह मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां।

नाहे ना निर्मल करनी, साध संगत कै अंचल लाव हो, बिखम नदी जाए तरनी। सो कहो टल गुर सेवी है, एहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे है गुरु कै।

खट कर्मा रत रहता, हों हों करत बंधन मैं परया, नह मिली है एह जुगता। जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए भी कर कर रहया। वड्डी आर जा फिर जन्मे, हर स्यों संग ना गहया। राज लीला राजन की रचना, करया हुकम अफारा।

राग एक संग पंच बरंगन संग लप है अठ नंदन प्रथम राग भैरव वह कर ही पंच राग नी संग उचर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनया की गाव है बंगली पुन सलेखी की पही बारी ए भैरव की पाचा नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मधमाधव गाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव की गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पा चौथाप है गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी

आनंद पाया मेरी माँ ए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाईया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गावहु हरी केरा मन जिनी वसाया।

पंजवी जमात के बच्चे आप जी ने गुरु अर्जन देव जी की रचना एक ताल बारह बीट्स विच शब्द सरवण करवाएंगे। हे गोबिंद हे गोपाल आप जी प्यार नाल सरवण करो जी।

सहन से सहज सुभाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण हो वे सिफत खसामेदी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी सजन सच्चा पात सा सिर साहन इस पास बैठे आ सो ही है सब ना दावे